गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त रेसी मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों हेलो फरमाइश की हमारी कॉलिंग लाइन ऑन हो चुकी है, आप हमें कॉल करके आपकी फरमाइशों को दर्ज करवा सकते हैं।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

पीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। पीएस प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE and CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।

0: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
1: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
2: DS साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो ओडिया गंगापुर सिटी का तड़का, पर मैं आपको रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर।
1: नाम बताएं आपका?
0: सर सवाई माधो जी से मोनिका बोल रहे हैं।
1: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
0: सर एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे है।
1: क्या नाम है आपकी फ्रेंड का?
0: महक।
1: महक जी को बर्थडे की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं, और हमेशा सदैव खुश रहे, वो ऐसी उम्मीद करते हैं हम रेडियो डीएस की टीम के माध्यम से।
0: सर उनके लिए मैं आज गाना गाली की कर रही हूँ कि ताजा ताजा कली के लिए हम उसके दीवाने हैं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं उनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना।
0: शुक्रिया सर।

0: हेलो तो नमस्ते
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं।
0: निशा शर्मा, गंगा सिटी से।
1: निशा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: समुंदर में किनारा तू सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे मैम आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: हेलो, हाँ जी नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
1: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
0: फिल्म का नाम है धर्मवीर और गाने के बोले ओ मेरी महबूबा महबूबा जान।

0: जी नाम बताएं सर।
1: आरबी गुजर।
0: आरबी गुजर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगा।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तू कल्ला ही सोना नहीं।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
1: नमस्कार सर, आपको, आपके परिवार जन, मित्र जनों एवं समस्त श्रोताओं को। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस पे?
0: आज मुझे जो गीत सुना है, पिक्चर का नाम है मैंने प्यार किया, ईद के बोल है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये तगला है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
3: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
2: नमस्कार सर, आपको, आपके परिवार जन, मित्र जनों एवं समस्त श्रोताओं को बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो पे?
3: आज मुझे जो गीत सुना है, पिक्चर का नाम है मैंने प्यार किया, गीत के बोल है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: हेलो
3: नवी, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम मुस्कान।
2: मुस्कान जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: गंगापुर से।
2: बताएं मुस्कान जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: तो आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो आपके हिसाब से अच्छा सा गाना लगा दो।
2: बिल्कुल मुस्कान जी, चला रहे हैं आपकी फरमाइश।
3: ओके
2: हेलो,

0: सदियां।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल।
3: डीएस 89.6
4: पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:50 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है श्री महावीर जी से। श्री महावीर जी से हमें कॉल किया है चौधरी जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हर बीच में है शहर का कमाल DS 89.6।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: मेरा नाम गोपाल मीना।
3: गोपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: डीजल पर
3: बताएं, सर पूछना चाहता हूँ।
4: आज कौन से

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: जी नमस्कार। और साहब सुनाओ क्या हाल है?
1: और बहुत बढ़िया है सर, आप बताएं। पहले तो आप बताएं आपका
0: नाम। तो हमारा बाबू खान है, लैंड पर ले लिया करो।
1: हाँ बाबू खान जी, आज बताएं कोई खजाना सुनना चाहेंगे आप?

0: 89.6 रेडियो डीएस, यहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
1: नाम
2: जी,
1: आप ऋषि मीणा बोल रहे हो ना?
2: यस सर।
1: बढ़िया से गाने सुना दो।
2: पहले आपका नाम बताओ सर।
1: नाम तो मेरा नाम सत्तू है।
2: सत्तू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं करोली फाटक, गंगापुर सिटी।
2: अब गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बेदर्दी वाले मत तुझे मेरा मन याद करता है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: जम्मू से केशव शर्मा जी।
1: जी कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मतलब बहारो खूब बसाओ मेरा महबूब आया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना जरूरी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: अंकित।
0: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं अंकित जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: नौकर का हरियाणा से
0: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: ख्वाब बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका।
1: I'm

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नाम अमर मीना।
0: अमर जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो
2: नमस्कार सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर।
2: सजाद खान पुराने मिला।
0: सजाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: ले मेरे तेरे आज के छोड़ गया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:33 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नाम अमर मीना।
0: अमर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सराय माधोपुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: ख्वाब।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हेलो
2: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नाम अमर मीना।
0: अमर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सराय माधोपुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: ख्वाब।
0: बिल्कुल सुना। हेलो
3: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
3: आरती शर्मा।
0: आरती शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: गंगापुर सिटी।
0: पता है मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा मिल जाए।
0: बिल्कुल।

0: 96 पे रेडियो डीएस सुनते रहिए। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: प्रियांश मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं प्रियांश जी?
2: जी मैं बात कर रहा हूँ मलाना डूंगर मानौली से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: जी मैं गाना सुनना चाहता हूँ ये दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी गुड।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी। ना
1: कोमल
0: कोमल जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं कोमल जी आपकी फरमाइश के।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: अरविंद।
0: अरविंद जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: वहाँ का बारिश सर मौसम कैसा है वहाँ?
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: नाम शशि भूषण कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: रहनमाल उड़ीसा से।
1: रहनमाल उड़ीसा से, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर एक हिंदी फिल्म का गीत दे जाना था।
1: बताएं सर।
0: दीवाना सनम रो देखा था उसने प्यार से।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
0: सर वहाँ का बारिश सर मौसम कैसा है वहाँ का?
1: मौसम यहाँ का बहुत प्यारा है सर, अभी धूप खिली हुई है और
0: उधर तो बारिश हो रहा है।
1: चार पांच दिन पहले हुआ था सर बूंदाबांदी, कई जगह हल्के हल्के ओले भी गिरे हैं ऐसे।

0: आपके कैसा है उड़ीसा का?
1: वहाँ का बारिश सारा दो दिन पहले से कल रात को भी हुआ बारिश।
0: अच्छा अच्छा, चलो फिर तो सुहावना मौसम हो गया, ठंडा है।
1: हाँ ठंडा हो गया, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। धूप ज्यादा तो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:11 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई आरकेजी और एमकेजी ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। सुनते हैं कि फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मोनिका।
1: मोनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: पीछे बज रही है, तूने मेरी पकड़ी
1: नहीं है। बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी

0: ना, तो जिंदगी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम सवाई माधोपुर से बात कर रहे हैं।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: हम गाना सुनना चाहते हैं फीलिंगों से भरा मेरा दिल।
1: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं। कहाँ से बात कर रहे हैं मीना जी?
0: नाथिया कॉलोनी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: कमर तेरी लैप कराए
1: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश रहेगा।

हाँ जी सत श्रीकाल जी, मैं ताड़ा अपना जुगराज संधू। उम्मीद करता तुसी मेरे वाला सरदार गाने नूं बहुत ज़्यादा पसंद करोगे ते मेरे अगले सोंग्स नूं सुन ली ग्रैंड स्टूडियो दे ऑफिशियली चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो। सत श्रीकाल जी।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों, तो वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: तो वक्त हो चुका है 1:11 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों हमारे स्टूडियो में मेहमान के रूप में आए हैं मोनिका मीणा जी सवाई माधेपुर से। राम राम सा।
1: राम राम जी।
0: हाँ तो मैम
1: आज बताइए पलक जी आपके क्वेश्चन किस चीज को लेके आए?
0: तो मैम मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ कि हमें चावल से क्या क्या फायदा मिलता है खाने में, ये कुछ हमारे स्किन के लिए। तो मैम पहले हमें ये बताइए कि चावलों से खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है?
1: देखो जैसे हमारे बहुत से लोग हमें क्या कहते हैं कि चावल भारी होते हैं, बादी करते हैं, ये बात कुछ हद तक ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ जैसे चावल खाने चाहिए गर्मियों में विशेषकर खाने चाहिए क्योंकि ये ठंडक देते हैं, ठीक है। कैलोस्ट्रॉल मतलब इनमें जीरो होता है, मतलब ये कैलोस्ट्रॉल नहीं होता इनके अंदर। और जिनको एक्ने पिंपल्स होते हैं ना उनको चावल जरूर खाने चाहिए। और जब देखो गर्मियों में कई बार हमारा पेट खराब, लूज मोशन करके ऐसी कोई दिक्कत होती है, खाना पचनीदा, एसिडिटी है, तो उस टाइम भी हमें चावल जरूर खाने चाहिए। और देखो पहले के टाइम में ना हम चावल में घी डाल के और बूरा डाल के खाते थे, है ना, तो वो हमें बहुत ताकत देता है, मतलब हमें ऐसा भी खाना चाहिए। हाँ जिनका वेट ज्यादा नहीं है, मोटे नहीं है उनको, ऐसे जिनको, और जिनको देखो जुकाम रहती है, नजला, ये परेशानी रहती है ना, उनको चावल नहीं खाने चाहिए शाम के वक्त, क्योंकि चावल ठंडक करते हैं, तो उन लोगों को शाम को चावल नहीं खाने चाहिए। और एक और बात, जैसे चावल की जब हम खीर बनाते हैं ना, तो बहुत लोगों को चावल की खीर खाने से बहुत गहरी नींद आती है, ये फैक्ट है बिल्कुल। मतलब चावल जब दूध के साथ मिलता है तो, और जिन लोगों की नींद टूटती है बार बार, वो चावल की खीर खा के सोए, वो खुद देखेंगे कि उनकी नींदों में कितना फर्क पड़ा है। लेकिन खीर को हमें नमक के साथ नहीं खाना चाहिए, 1 घंटा पहले खाओ नमक या चावल खाने के 1 घंटा बाद खाओ। और जो लोग पतले होते हैं ना उनको तो चावल और रोटी साथ खा लेनी चाहिए, लेकिन जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों को चावल रोटी एक साथ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारा वेट को बढ़ाता है, दोनों साथ खाने से वेट को बढ़ने को मिलता है, ये है।
0: तो मैम जैसे हम चावल का, मैंने कुछ सुना है कि लोग बाग कहते हैं कि चावल को हमारे चेहरे पर लगाने से क्या लुक आता है, इसमें क्या फायदा मिलता है घरेलू नुस्खे से?
1: देखो ये होता है जैसे गर्मी है और सन बर्न की दिक्कत हो जाती है, सन बर्न मतलब कि हमारी स्किन धूप में ब्लैक होने लगती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे चावल का आटा है उसको आप दही में, खट्टे दही में मिला के थोड़ी देर के लिए रखो और उसको आप लगाओ और 5 मिनट बाद उसको साफ कर दो, आप देखोगे आपकी स्किन है ना साफ होने लगेगी धीरे धीरे। और उसके बाद है ना जैसे चावल का जो पानी होता है उसको रुई से आप ना डेली यूज करो, उसको आपके टोनर की तरह यूज होगा, आपकी स्किन चमकने लगेगी, साफ लगेगी आपको। और ये चावल का पानी और ये सब तो मैं भी खुद भी यूज करती हूँ हमेशा, और मतलब स्किन टोनर के लिए अच्छा, एक हेल्दी है ये स्किन के लिए। और इसका मांड होता है, जैसे मांड में भी है ना, आप मांड लगा के छोड़ो फेस पे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद फेस मतलब आपका ग्लो करने लगेगा, साफ साफ लगेगा आपको अपने आप ही, ये है।
0: तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अब चावलों का जो पानी रहता है, हम रात को चावल को भिगो के और फिर उसको सुबह चाय पत्ती में डालकर, तो इससे बालों से क्या होता है?
1: हाँ ये बहुत फायदा करता है, और ये तो पलक जी आप खुद भी यूज करते हैं, काफी बार आप मुझसे चर्चा कर चुकी हैं कि मैम मैं भी यूज करती हूँ।
0: हाँ तो मैम मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इससे क्या फायदा मिलता है बालों में हम?
1: देखो हाँ बोलो।
0: हाँ तो इससे हमें ये फायदा बताओ कि जैसे हम बालों में ये चावल ही, मैं तो यही करती हूँ चावलों को उबाल के शाम को भिगो देती हूँ और सुबह इनको उबाल के चाय पत्ती में लगा लेती हूँ, पर इसमें कुछ और भी बताइए जो हम डाल के कुछ ग्रोथ बड़े बालों की, थोड़ी चमक भी दिखे बालों में, शाइनिंग।
1: देखो मेथी दाना भी और एक करी पत्ता आप देखेंगे ना, आप वैसे भी अगर 10-5 पत्ते डेली के खाओगे ना उससे भी बहुत फायदा रहेगा करी पत्ते से। और करी पत्ते जैसे उबालते टाइम है ना, आप चावल के पानी जब चावल उबालो, करी पत्ता, मेथी दाना ये भी डाल के उबालो, अब वाकई में बाल मजबूत होते हैं इसे। और एक ये पैक की तरह हमारे, जैसे हमारे फेस पे हम पैक यूज करते हैं ना, ऐसे हमारे ये बालों के लिए पैक का काम करता है। तो बाल ना मोटे अच्छे होते हैं इससे, क्योंकि चावल और पता है चावल कौन से वाली यूज करनी चाहिए? चावल हमें ना हल्के जो राशन के चावल आते हैं ना, हमारे इस साइड तो शायद मिलते नहीं है राशन में चावल, लेकिन ये यूपी की तरफ चावल मिलते हैं राशन के, लेकिन वो ज्यादा फायदा है स्किन के लिए भी और ना बालों के लिए भी, वो चावल ज्यादा फायदा करते हैं, उनमें मांड ज्यादा होता है। हमारे चावलों में मांड बहुत कम निकलता है, लेकिन उन चावलों में जो हल्के होते हैं बिल्कुल उनमें मांड ज्यादा है, लेकिन हाँ चावल बालों में बहुत फायदा करता है। इसका पानी भी, आप इसका पानी जो निकलेगा ना, मतलब भिगोया हुआ ही पानी आप यूज कर लो, तो उसको लगा के छोड़ दो बालों में, तो आप देखोगे बालों को, बालों की मतलब जो मजबूती है ना वो डबल हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन हाँ एक दिन लगाने से नहीं होती। मैंने हर बार इस चीज को कहती हूँ कि कभी भी की कोई भी चीज एक बार करने से नहीं होती, अब डे बाय डे उसको हमेशा यूज करो, बार बार यूज करो, तब कुछ रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये है,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे श्रोताओं को और हमें इतना अच्छी बात बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।
1: राम राम, शुक्रिया।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
2: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828995000। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ

और दोस्तों वक्त हो चुका है 3:43 का। दोस्तों वक्त हो चुका है 3:53 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
4: गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो DS पर।

0: दोस्तों फिलहाल आप टून कर रहे 89.6 रेडियो ओडियास गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम। दोस्तों थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर से।
3: ठीक है सर, नाम क्या है आपका?
4: नाम तो बाबू खान है।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी लखेरी की बगीची।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: कोमल।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होगा।

0: हेलो।
1: हेलो मनीषा,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी। पर
0: कौन सा नाम सुनना चाहोगे?
1: देसी परदेसी जाना नहीं मुझको छोड़ के।

0: मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: व्हाट इज द शेयर? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेयर, इट रियली हर्ट्स।

दोस्तों 4:50 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो ओडिया गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। चलो दोस्तों कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। अगली फरमाइश सुनते हैं। हमारे पास कॉल आया है मोनिका मीना जी का सवाई माधोपुर से। सुनते हैं उनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले।
1: हेलो
2: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: वही कल वाला बहन जी, दूसरा सुना दिया था आपने। मैंने कहा था वो फिल्म की असली नकली और उसका बोल था गाने का, ये एक तो ये भरपूर जवानी, दूजी और बरसा पानी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडी डीएस में कॉल करने के लिए।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी. संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111.
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी.
2: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है. मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि. सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान. सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस, वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस. ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है. वर्तमान में एडमिशन ओपन है. स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान. ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है.
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर.
3: ठीक है,
4: गुड न्यूज फॉर DS साइंस एकेडमी एंड गंगापुर सिटी एंड ऑल ओवर इंडिया. अकॉर्डिंग टू NTRC.

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: तेरा खान पुराने इलाम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुझको मेरे बाद जमाना मिलेगा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी
0: शर्मा मोहम्मद रफीक का।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: And number two,
1: just a second, stop. Good news.

0: जी, नाम क्या है आपका सर?
1: नाम चौधरी वेदन कर रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना बढ़िया लाए हैं आपके चैनल पर।
0: हाँ जी बताइए।
1: चांदी की साइकिल।
0: चांदी की साइकिल
1: जी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडी डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: यू वेलकम सर। हेलो।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। प्यारे लाल जी का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी माँ का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और वो चाहते थे कि प्यारे लाल वॉयलिन सीखें। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वो घर घर जाते थे जब भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता था और साथ में प्यारे लाल जी को भी ले जाया करते थे। प्यारे लाल जी का मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता जी के घर ले गए। लता जी प्यारे लाल के वॉयलिन वादन से इतनी खुश हुई कि उन्होंने प्यारे लाल को 500 रुपए इनाम में दिए, जो जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटे वॉयलिन का रियाज करते, अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो में ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिली, जहां उन्हें 85 रुपए मासिक वेतन मिला। अब उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा था। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वीं ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर 3 रुपए की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें वो छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेशी यात्रा करना उनका सपना था। आज सफरनामे में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: 89.6 पे रेडियो DS।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआईएस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डी

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया।

जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज।

पूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो हो। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आरजी खुशी। आज सुबह सुबह एक बहुत अच्छी बात पढ़ी मैंने। वैसे कहीं ना कहीं तो आपने भी ये बात सुनी होगी कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी हो तो कोई डिसीजन ना ले। और जब मैंने याद किया तो मुझे याद आया कि मैंने अपने जीवन के जो सबसे गंदे डिसीजंस लिए ना, वो तभी लिए हैं जब मैं बहुत ज्यादा खुश थी या बहुत ज्यादा दुखी थी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डिसीजन आप तब लें जब आप बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में हो, यानी कि ना दिमाग में खुशी हो ना दिमाग में दुख हो। और अगर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और इमोशन भी हम पे बहुत ज्यादा हावी है तो एक या दो दिन का समय लें। डिसीजन लेने में कभी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी फोर्स करे। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजी खुशी।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6।
1: क्या बात है, क्या बात है, बड़ा ही ताजगी भरा गाना सुना आपने रेडियो DS 89.6 पे। और आप सोच रहे होंगे कि ओए होए होए बहुत ठंड है यार गंगापुर सिटी में, क्या करे। सुनो, हम सिर्फ इंसान ही भैया ठंड के चपेट में नहीं आते। वो आईफिल टावर तो आपको पता ही होगा जो इटली पेरिस में है ना, बिल्कुल हर साल ठंड के दौरान भैया वो 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा मत करो, आपकी मर्जी है। वैसे एक और फैक्ट बताता हूँ कि ठंड के दौरान अगर आप मुझे 1 घंटे हेडफोन लगा के, मुझे नहीं किसी को भी हेडफोन लगा के सुनते हो, गाने सुनते हो, तो बैक्टीरिया 700% यानी 700 गुना तक भैया बढ़ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है कि आप मुझे सुनना बंद कर दो। नहीं भैया, मुझे सुनते रहोगे

0: तो एक घंटे में आपके सारे टेंशन भी गायब हो जाएंगे। तब ही तीन गाने सिर्फ आपके लिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: बहुत ही प्यारा अमेजिंग गाना सुना आपने रेडियो डीएस 89.6 पे। और अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि इंसान यानी कि मैं यानी कि आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब होते हैं? अब अगर आपका जवाब है सोते वक्त, तो आप गलत हो, क्योंकि सोते वक्त हम सपने देख रहे होते हैं। अगर आपका जवाब है चलते वक्त, तो भी आप गलत हो, क्योंकि हम चलते वक्त अपने स्टेप्स गिन रहे होते हैं। अगर आपका जवाब है नहाते वक्त, तो आप सही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिएटिव इंसान शावर लेते वक्त या नहाते वक्त होता है। अब अगर आप बहुत दिनों से क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहे हो, तो इसका एक ही भैया रीजन है कि आपने नहाया नहीं। अब आप बोलोगे, नहीं यार गंगापुर सिटी में ठंड बहुत है, तो क्या करे? कुछ नहीं, गाने सुनो।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6।
1: नॉक नॉक। हेलो। अच्छा सॉरी सॉरी, आप ध्यान से गाने सुन रहे थे तो मेरे को लगा कि शायद आप ध्यान से मेरी दो लाइंस भी सुन ही लोगे। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और पेश करता हूँ आपके खिदमत में नजरों से जुदा हुआ ना, नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ, ना नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ, यू अलविदा हुआ भी तो क्या अलविदा हुआ, हुआ नहीं हुआ कोई सेंस बन रहा है इस बात का, नहीं बन रहा, बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि अलविदा कह के मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कहाँ, रेडियो DS 89.6 पे,
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एक कहानी उस लेजेंडरी एक्टर की जिसने है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इस गीत को अपने अभिनय के दम पर एक सदाबहार हिट सॉन्ग बना दिया, जिसने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया बल्कि एक बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर दोनों की भूमिका में कई सारे नए कलाकारों को एक उड़ान दी, जिसे पूरी दुनिया मनोज कुमार के नाम से जानती है। जी हाँ, आज सफरनामे में हम बात करने जा रहे हैं मनोज कुमार साहब के बारे में। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।